एम्बुलेन्स र चारपाङले मोटरले खोजेर कुरेर बस्नु हुँदैन। यही नजिकको बस्तीमा मेरो एकजना मोटरसाइकल वाला साथी छ, फोन गरिहाले। तपाईँ नातिकन साथीलाई ध्यान दिनुहोस् है। हेलो मुकेश, तुरन्त तिमी मोटरसाइकल लिएर यहाँ आइहाल त। यहाँ एकजना बहिला सर्पले टोकेर इमर्जेन्सी पर्यो, तुरुन्तै उपचार केन्द्रमा लानु पर्यो। राजमार्ग चौराको 100 मिटर पश्चिम देब्रेपट्टि छौँ है हामी। मुकेश झट्टै हो सबै काम छाडेर रा।

శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీ మౌలికాలిక దేవే నమః. విధిధామ సమ ప్రభా మృగవతి స్కందస్థితామీశ్వరాం కన్యాభి కర్వాల ఖేట విలసత్ హస్తవిరా సేవితాం హస్తై సకరగదా శిఖేట విష్కాం చాపం గుణం తర్జనీం బిభ్రాణాం మనలాతికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే. देवी भगवती मौलकालिका को शरण में हार्दिक नमन. तपाईं को अंतर दिल में विद्यमान आत्मस्वरूपी परमात्मालाई नमस्कार. मध्य नेपाल के उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 को प्रभात कालीन प्रस्तुति कार्यक्रम आराधना में तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. म कृष्णमणि. प्रविधि संयोजन मित्र राजेन्द्र एवं अरुण का साथ में आज को यह सुगत व्यवसायी में तपाईं हामी यह दिव्य यात्रा गरिरहेका छौं. धार्मिक सेवा समिति मौलकालिका मंदिर को सहयात्रा एवं सहयोग में संचालित इस कार्यक्रम यहां प्रत्येक दिन यह शुभ बिहानको 5 बजेदेखि सुन्दै आउनु भएको छ. आउनुहोस् कार्यक्रमको श्री गणेश गरौँ. आजको पञ्चाङ्गसँग सम्बद्ध जानकारीबाट आज मिति 2083 साल भाद्र 2 गते मङ्गलबार, तदनुसार अगस्त 18 तारिक सन् 2026, अहिले श्रावण शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि. षष्ठीको घडी बेला रहेको छ 34:44, जसको अवधि हुनेछ रात्रिको 7:30 सम्मको. यसै गरी चित्रा नक्षत्र रहेको छ 5:36, यसको अवधि भने अहिले बिहानको 7:50 सम्मको हुनेछ. साथै शुभ योग छ. यसै गरी करणमा कौलव एवं तैतिल करण रहेको छ. आनन्दादि योगमा ध्वांस योग छ. तुला राशिमा चन्द्रमाको अवस्थिति अहोरात्र नै रहेको छ. दिनमान 32:34 रहेको छ. सूर्योदय बिहान 5:36 हुँदैछ भने सूर्यास्त साँझ 6:37 हुनेछ. आज कल्की जयन्तीको पावन दिन रहेको छ. भगवान श्री कल्की अवतारको जन्म जयन्तीका रूपमा मनाइने यो पवित्र दिन भगवान श्री विष्णुका अनुकम्पाद्वारा सबैका जीवनमा सुख समृद्धि प्राप्ति होस् भन्ने कामना गर्दछौँ. आउनुहोस् भक्त साधक, सर्वप्रथम हामी शक्तिकै उपासनाबाट कार्यक्रमको ढोका उघारौँ. शक्ति ही सर्वत्र पूज्यते. जहाँसुकै शक्तिकै सम्मान हुन्छ, गरिमा हुन्छ, पूजन हुन्छ तथा सेवा सत्कार हुन्छ. तसर्थ न गायत्र्यः परो मन्त्रः. सर्वप्रथम गायत्री भगवतीको उपासना गर्नु भनेको शक्तिको उपासना हो. तसर्थ सर्वप्रथम शक्तिको उपासनाबाट नै हाम्रा दिनका हरेक क्रियाकलाप र दिनचर्याहरूको प्रारम्भ हुन्छ. यही क्रियाकलापको प्रारम्भिक बिन्दुमा हामी भगवती देवी मौलकालिकाको उपासनाको सन्दर्भसँग जोडिँदैछौँ. जुन पवित्र भूमिलाई तपाईँ ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय धरोहरका रूपमा लिन सक्नुहुन्छ.